इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 एफएम, ऑलवेज हैड टची।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, बाजार में जब कोई नकली या मिलावटी चीज बेची जाती हैं तो दुकानदार उसकी पैकेजिंग बहुत शानदार बनाता है, उस पर चमकीले रैपर लगाए जाते हैं, सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं ताकि खरीदार बाहर की चमक धमक देखकर धोखा खा जाए और भीतर की सच्चाई को ना देख सकें। आज हम सब भी अपनी ज़िंदगी की पैकेजिंग को सुंदर बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं। महंगे और उजले कपड़े, बढ़िया खान पान, समाज में रसूख और ऐशो आराम के साधन, हम इन सब चीज़ों से खुद को बाहर से तो राजा की तरह सजा लेते हैं, लेकिन इसके भीतर जो हमारी आत्मा है वह भूखी और सोई हुई रह जाती हैं। कबीर साहब आज हमें इसी बाहरी विलासिता के पीछे छिपे भयानक अंजाम से सावधान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम जागृत दार्शनिक सूत्र। उजल कपड़ा पहरी करी पान सुपारी खाही, उजल कपड़ा पहरी करी पान सुपारी खाही, एके हरी के नाव बिन बांधे जमपुरी जाही।

करा संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक

0: इस कड़ी में हम आपको स्वामी जी द्वारा कही गई कुछ बातें बताएंगे। आहार और खान पान के संबंध में उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य आचार की तुलना बड़े ही रोचक ढंग से की है।
1: हम लोगों की जैसी साफ रसोई कहीं भी नहीं है, परंतु विलायती भोजन पद्धति की तरह हमारा तरीका साफ नहीं है। हमारा रसोईया स्नान करता है, कपड़ा बदलता है, बर्तन भांडा चूल्हा चौका सब धो मांज कर साफ करता है। नाक मुंह या शरीर में हाथ छू जाने से उसी समय हाथ धोकर फिर खाद्य पदार्थ में हाथ लगाता है। विलायती रसोईये के तो 14 पुरखों ने भी कभी स्नान नहीं किया होगा। पकाते पकाते खाने को चखता है, फिर उसी चमचे को बटलोई में डालता है, रुमाल निकालकर थूकता है, नाक साफ करता है और फिर उसी हाथ से मैदा सानता है, किंतु वो पहनता है खूब साफ कपड़ा और टोपी। एक नांद में मैदा डालकर दो आदमी पैर से कुचलते हैं, इसी तरह मैदा गूंथा जाता है। गर्मी का मौसम, सारे शरीर का पसीना पैर के रास्ते बहकर उसी मैदे में जाता है। जब उसकी रोटी तैयार होती है तब दूध जैसी सफेद तौलिया के ऊपर चीनी के बर्तन में सजाई जाकर साफ चादर बिछे हुए टेबल के ऊपर साफ कपड़े पहने हुए कोहनी तक हाथ में साफ दस्ताना चढ़ाए हुए नौकर लाकर सामने रख देता है। शायद कोई चीज हाथ से छूनी पड़े इसलिए कोहनी तक दस्ताने पहने रहता है।
2: और अब हमारे रसोइयों के बारे में भी सुनिए।
1: हम लोगों के यहाँ स्नान किए हुए ब्राह्मण देवता धोए मांजे हुए बर्तन में शुद्ध होकर पकाते हैं और गोबर से लिपी हुई जमीन पर थाली रखते हैं। ब्राह्मण देवता के कपड़े पसीने से मैले हो जाते हैं, उनमें से बदबू निकलने लगती है। कभी कभी केले का पत्ता फटा होने से मिट्टी मैला गोबर युक्त रस एक अपूर्व आस्वाद उपस्थित करता है।
0: इसके पश्चात स्वामी जी हमारी और उनकी तुलना साफ सफाई के मामले में करते हैं।
1: हम लोग स्नान तो करते हैं पर तेल लगा हुआ मैला कपड़ा पहनते हैं, और यूरोप में मैले शरीर पर बिना स्नान किए हुए खूब साफ सुथरी पोशाक पहनी जाती है। इसे ही अच्छी तरह समझो, यहीं पर जमीन आसमान का अंतर है। भारतीयों की अंतर दृष्टि होती है, वे सब कामों में समानता रखते हैं। हम फटी गुदड़ी में कोहिनूर रखते हैं, विलायत वाले सोने के बॉक्स में मिट्टी का ढेला रखते हैं। हमारा शरीर साफ होने से ही काम चल जाता है, कपड़ा चाहे जैसा भी क्यों ना हो। विलायत वालों का कपड़ा साफ होने से ही काम चलता है, शरीर मैला भी रखा जा सकता है। भारतीयों का घर द्वार धो मांज कर साफ रहता है, चाहे उसके बाहर नरक का कूड़ा ही क्यों ना हो। विलायत वालों की फर्श पर झकझकाती कारपेट एक प्रकार की दरी पड़ी रहती है, कूड़ा करकट छिपा रखने से ही काम चल जाता है। अपना पनाला रास्ते पर रहता है जिससे बहुत दुर्गंध फैलती है। विलायत वालों का पनाला रास्ते के नीचे रहता है जो सन्निपात ज्वर का घर है। भारतीय भीतर साफ रखते हैं, विलायती बाहर साफ रखते हैं। क्या चाहिए? साफ शरीर पर साफ कपड़े पहनना, मुंह धोना, दांत मांजना सब चाहिए, पर एकांत में। घर साफ चाहिए, रास्ता घाट भी साफ हो। साफ रसोईया, साफ हाथों से पका भोजन साफ सुथरे मनोरम स्थान में साफ किए हुए बर्तन में रखना चाहिए।
2: स्वामी जी ने हमारे देश के खाद्य पदार्थों की भी आलोचना की है। वे कहते थे,
1: तली हुई चीजें असली जहर है, हलवाई की दुकान तो यम का घर है। घी तेल गरम देश में जितना कम खाया जाए उतना ही अच्छा है। घी की अपेक्षा मक्खन जल्दी हजम होता है, मैदे में कुछ भी नहीं है, देखने में ही सफेद है। जिसमें गेहूं का सार भाग हो वही आटा खाना चाहिए। हमारे बंगाल देश में इस समय भी दूर के छोटे छोटे गांव में जो भोजन का बंदोबस्त है वही अच्छा है। किस प्राचीन बंगाली कवि ने पूरी कचौरी का वर्णन किया है? किसी ने नहीं। ये पूरी कचौड़ी तो पश्चिम भारत से आई है, वहां भी लोग बीच बीच में उन्हें खाते हैं। हर रोज पक्की रसोई खाने वालों को तो मैंने नहीं देखा है। मथुरा के चौबे कुश्तीबाज होते हैं, लड्डू और कचौड़ी उन्हें अच्छी लगती है। दो ही चार वर्षों में चौबे जी की पाचन शक्ति का सर्वनाश हो जाता है, फिर तो चौबे जी चूरण खा खा कर मरते हैं। गरीबों को भोजन नहीं मिलता, इसलिए वे भूखे ही मरते हैं, और धनी अखाद्य खाकर मरते हैं। इससे तो पेट भरने की अपेक्षा उपवास ही अच्छा है। हलवाई की दुकान पर खाने लायक कोई चीज नहीं होती, वहां के सब पदार्थ एकदम विष हैं। पहले असभ्य लोग इन्हें खाते थे, इस समय तो शहर के लोग, विशेषकर वे परदेसी जो शहर में वास करते हैं, इन्हें ही खाते हैं। इनसे अजीर्ण होकर यदि अकाल मृत्यु हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मुफ्त में मिलने पर भी कचौड़ी जलेबी को फेंक दो, एक पैसे की लाई मोल कर खाइए, किफायत भी होगी और कुछ खाया ऐसा भी होगा। भात, दाल, रोटी, मछली, तरकारी और दूध काफी भोजन है, किंतु दाल दक्षिणियों जैसी खाना उचित है, अर्थात दाल का सिर्फ पानी ही लेना और बाकी सब गाय को दे देना चाहिए।
0: स्वामी जी से कुछ स्वादिष्ट दाल के बारे में जानिए।
1: मसाला खाने की चीज नहीं है, केवल आदत के ही कारण हम उसे खाते हैं। दाल बहुत पुष्टिकर खाद्य है, किंतु बहुत देर में हजम होती है। हरी मटर की दाल बहुत ही जल्द हजम होती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। पेरिस में हरी मटर का सूप बहुत विख्यात है। कच्ची मटर की दाल को खूब पकाकर फिर उसे पीसकर जल में घोल दो, फिर एक दूध छानने की छन्नी की तरह की तार की छन्नी से छान लेने से ही भूसी वगैरह निकल जाएगी। इसके बाद हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च तथा जो चीजें डालनी हो उन्हें डालकर छोंक लेने से उत्तम स्वादिष्ट सुपाच्य दाल बन जाती है।
2: फिर अच्छा भोजन किसे कहेंगे?
1: खाने का अर्थ क्या पेट भरना ही है? जितना हजम हो जाए उतना ही खाना चाहिए। तूंद का बढ़ना बदहजमी का पहला चिन्ह है। सूख जाना या मोटा होना दोनों ही बदहजमी हैं।
0: पैदल चलना तो हम भूल ही गए हैं, सुनिए स्वामी जी का क्या कहना है।
1: भोजन की ओर खूब ध्यान दो, जिससे अजीर्ण ना हो। जहां तक संभव हो खुली हवा में रहो, खूब घूमो और परिश्रम करो। जैसे भी हो छुट्टी लेकर बद्रिकाश्रम की तीर्थ यात्रा करो। हरिद्वार से पैदल 100 कोस चलकर बद्रिकाश्रम जाने और लौटने से ही वो अजीर्ण की बीमारी न जाने कहां भाग जाएगी। डॉक्टर फॉक्टर को पास मत भटकने दो, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं कि अच्छा तो कर नहीं सकेंगे, उल्टा खराब कर देंगे। हो सके तो दवा बिल्कुल मत खाओ। रोग से यदि एक आना मरते हैं तो औषधि खाकर 15 आना मरते हैं। हो सके तो हर साल दुर्गा पूजा की छुट्टी में पैदल घर जाओ। धनी होना और आलसियों का बादशाह बनना इस देश में एक ही बात समझी जा रही है। जिसको पकड़कर चलाना पड़े, खिलाना पड़े, वो तो जीवित रोगी है, हतभाग्य है। जो पूरी की परत को छीलकर खाते हैं वे तो मानो मर गए हैं। जो एक सांस में 10 कोस पैदल नहीं चल सकता वो आदमी नहीं केंचुआ है। यदि रोग अकाल मृत्यु बुला दे तो कोई क्या करेगा?
2: श्रोतागण स्वामी जी को नाराज होते देख चुप हो जाते हैं। स्वामी जी और भी गुस्से में आकर कहते हैं,
1: हमारे देश में जिनके पास 2 पैसा है वे अपने बाल बच्चों को पूरी मिठाई खिलाएंगे ही, भात रोटी खिलाना उनके लिए अपमान है। इससे बाल बच्चे आलसी निर्बुद्धि हो जाते हैं तथा उनका पेट निकल आता है और सचमुच जानवर की शक्ल न हो जाएगी तो क्या? इतनी बलवान अंग्रेज जाति भी पूरी मिठाई आदि से डरती है। ये लोग तो बर्फीले देशों में रहते हैं, दिन रात कसरत करते हैं। हम लोग तो अग्नि कुंड में रहते हैं। एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना नहीं चाहते और खाना चाहते हैं पूरी कचौड़ी मिठाई घी में और तेल में तली हुई। पुराने जमाने में गांव के जमींदार सहज ही 10 कोस घूम आते थे, 20-25 मछलियां कांटा समेत चबा जाते थे और 100 वर्ष जीते रहते थे। उनके लड़के बच्चे कलकत्ते आकर आंख पर चश्मा लगाते हैं, पूरी कचौड़ी खाते हैं, रात दिन गाड़ी पर चढ़ते हैं और बीमारी होने से मरते हैं। कलकतिया होने का यही फल है और सर्वनाश करते हैं यह जीव डॉक्टर और वैद्य, वे तो सर्वनाश हैं। औषधि के प्रभाव से वे सब कुछ कर सकते हैं, पेट में थोड़ी गर्मी हुई तो दे दी एक दवा। ये अजीब वैद्य भी ये नहीं कहते कि दवा छोड़कर 2 कोस टहलाओ।
0: उनका मत था साधारण भारतीयों का भोजन ही सबसे अच्छा है, पर हम सभ्य बनने के फेर में कुछ बुरी चीजों को भोजन में शामिल कर लेते हैं।
1: मैंने भिन्न भिन्न देश देखे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी किए हैं, पर हम लोगों के भात दाल आदि की वे बराबरी नहीं कर सकते। खाने में क्या अंग्रेज की नकल करनी होगी, उतना रुपया कहाँ है। इस समय हमारे बंगाल देश के लिए यथार्थ उपयोगी भोजन है पूर्व बंगाल का भोजन, वो स्वादिष्ट पुष्टिकर और सस्ता है। जितना हो सके उसी की नकल करो, जितना पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ोगे उतना ही खराब है। देखते नहीं उड़द की दाल और मछली का झोल, यही आधे संथाली परगने वीरभूमि बांकुड़ा आदि का भोजन है। तुम लोग कलकत्ते के आदमी हो, ये जो सर्वनाश की जड़ हलवाई की दुकान खोलकर बैठे हो, वहां मिट्टी युक्त मैदे का सामान बनता है। उसकी सुंदरता के फेर में पड़कर वीरभूमि बांकुड़ा ने लाई को दामोदर में बहा दिया है। उर्द की दाल उन लोगों ने गड्ढे में फेंक दी है, जल में और पोस्ता से दीवार को लीप दिया है। ढाका और विक्रमपुर वाले भी मछली को जल में बहाकर सभ्य हो गए हैं। स्वयं तो सत्यानाश हुए ही हो, अब सारे देश को नष्ट कर रहे हो। तुम लोग तो बड़े सभ्य हो, शहर के बाशिंदे हो, आग लगे तुम्हारी सभ्यता को।
2: कहते कहते स्वामी जी उत्तेजित हो उठते हैं, फिर थोड़ी देर चुप रहकर खुद को संभालते हैं और आगे कहते हैं,
1: खाने पीने के संबंध में मोटी बातें तुम लोगों ने सुनी। इस समय पाश्चात्य देशवासी क्या खाते हैं और उनके आहार में क्रमशः कैसा परिवर्तन हुआ है वो भी हम देखेंगे। गरीबी की अवस्था में सभी देशों का खाद्य विशेषकर अन्न ही रहता है, साग तरकारी मछली मांस भोग विलास में शामिल है और चटनी की तरह व्यवहृत होती है। जिस देश में अन्न की पैदावार अधिक होती है वहां के गरीबों का वही भोजन है, दूसरी सब चीजें प्रासंगिक हैं। बंगाल उड़ीसा मद्रास और मालाबार के किनारे पर भात ही प्रधान खाद्य है, उसके साथ कभी कभी दाल तरकारी मछली मांस आदि चटनी की तरह खाया जाता है। भारतवर्ष के अन्यान्य सब प्रदेशों में संपन्न लोगों का भोजन गेहूं की रोटी और भात है। साधारण लोग नाना प्रकार के अन्न बाजरा महुआ ज्वार मकई आदि की रोटियां खाते हैं। साग तरकारी दाल मछली मांस आदि सारे भारतवर्ष में इसी रोटी या भात को स्वादिष्ट बनाने के लिए व्यवहार में आते हैं, इसीलिए उनका नाम व्यंजन पड़ा है। पंजाब राजपूताना और दक्षिण में संपन्न लोग यद्यपि प्रतिदिन मांस खाते हैं फिर भी उनका प्रधान खाद्य रोटी या भात ही है। जो व्यक्ति आधा सेर मांस खाता है वो अवश्य ही उसके साथ एक सेर रोटी खाता है।
3: स्वामी जी पश्चिमी देशों में आम जनता का आहार क्या है?
1: पाश्चात्य देशों में गरीब प्रदेशों तथा धनी देशों के गरीब लोगों का प्रधान भोजन रोटी और आलू ही है, मांस तो चटनी की तरह कभी कभी मिल जाता है। स्पेन पुर्तगाल इटली आदि गर्म देशों में अंगूर अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और अंगूरी शराब बड़ी सस्ती मिलती है। उन शराबों में नशा नहीं होता, अर्थात जब तक कोई बहुत ज्यादा ना पी ले तब तक उसे नशा ना होगा और वो बहुत पुष्टिकर खाद्य है। उन देशों के गरीब लोग मछली मांस की जगह इसी अंगूर के रस से मजबूत होते हैं। रूस, स्वीडन, नॉर्वे प्रवृत्ति उत्तरी देशों में गरीब लोगों का प्रधान आहार है राई नामक अन्न की रोटी और एकाध टुकड़ा मछली या आलू। यूरोप के धनी लोग और अमेरिका के लड़के बूढ़े सभी दूसरे ही तरह का खाना खाते हैं, अर्थात उनका खाद्य मछली मांस, रोटी भात तथा चटनी अचार आदि और चीजें हैं। अमेरिका में रोटी नहीं खाई जाती, ऐसा कहने से भी चल सकता है। निरा मांस ही परोसा जाता है, फिर खाली मछली ही परोसी जाती है, भात रोटी के साथ नहीं।
3: क्या पश्चिम के सभी देशों में खान पान का रिवाज एक जैसा ही है, या भारत की तरह अलग अलग प्रांतों का आहार भी अलग है?
1: नहीं, अलग अलग है। जैसे फ्रांसीसियों का रिवाज है सवेरे कॉफी के साथ एकाध टुकड़ा रोटी और मक्खन खाना, लोग दोपहर में मछली मांस आदि खाते हैं, रात में पूरा भोजन होता है। इटली, स्पेन प्रभृति देशों में रहने वाले जातियों का भोजन फ्रांसीसियों जैसा ही है। जर्मनी वाले 5-6 बार में बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रत्येक बार थोड़ा मांस जरूर रहता है। अंग्रेज 3 बार खाते हैं, सवेरे थोड़ा सा, किंतु बीच बीच में कॉफी या चाय पीते रहते हैं। अमेरिकन लोग 3 बार अच्छा खाना खाते हैं जिसमें मांस अधिक रहता है। फिर भी इन देशों में डिनर नामक भोजन ही प्रधान होता है। अमीरों के यहाँ फ्रांसीसी रसोईया रहता है और फ्रांसीसी पद्धति से भोजन बनाया जाता है। ये लोग भोजन के अंत में बिना दूध की कॉफी पीते हैं। इनके डिनर में इतना अधिक खर्च होता है कि उससे हमारे यहाँ के मध्यम श्रेणी के मनुष्य का तो सर्वनाश ही हो जाएगा।
0: फिर वे भोजन करने की विभिन्न पद्धतियों पर बात शुरू करते हैं।
1: आर्य लोग पालथी मार कर एक पीढ़े पर बैठते थे और टेकने के लिए उनके पीछे एक पीढ़ा रखा जाता था। एक छोटी चौकी पर थाल रखकर एक थाल में ही सब कुछ खा लेते थे। ये रिवाज इस समय भी पंजाब, राजपूताना, महाराष्ट्र और गुजरात में मौजूद है। बंगाली, उड़िया, तेलंगी और मालाबारी जमीन पर ही बैठकर भोजन करते हैं। मैसूर के महाराज भी जमीन पर भात दाल खाते हैं। मुस्लिम चद्दर बिछाकर खाते हैं। बर्मी, जापानी आदि ऊंचे पर बैठकर जमीन पर थाल रखकर खाते हैं। चीन वाले कुर्सी पर बैठकर टेबल पर खाना रखकर कांटे चम्मच से खाते हैं। रोमन तथा ग्रीक लोग खाना टेबल पर रखकर खाते हैं। पहले यूरोपीय कुर्सी पर हाथ से खाते थे, अब कांटे चम्मच से खाते हैं। चीनियों का भोजन सचमुच एक कसरत है। हमारे देश में जैसे पान वाली लोहे के पत्थर के 2 टुकड़े से पान तराशती है, उसी प्रकार चीनी दोनों हाथों में लकड़ी के 2 टुकड़े अपनी हथेली और उंगलियों के बीच में चमचे की तरह पकड़ते हैं और उसी से तरकारी आदि खाते हैं। फिर दोनों को एकत्र कर एक कटोरी में भात मुंह के पास लाकर उन्हीं दोनों के सहारे उस भात को ठेल ठेल कर मुंह में डालते हैं। एस्किमो जाति बर्फ में रहती है, वहां अनाज बिल्कुल नहीं पैदा होता, वहां रोज का खाना मछली और मांस ही है।
3: स्वामी जी, हमारे शास्त्रों में तो आभिष आहार की मनाही है ना, प्याज लहसुन तक मना है।
1: दक्षिणी ब्राह्मणों का प्याज लहसुन के बिना खाना ही नहीं होता, शास्त्रकारों ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। प्याज लहसुन मुर्गी और मांस खाने से जाति का सर्वनाश होता है, ये हिंदू शास्त्रों का कहना है। कुछ लोगों ने डर कर इन्हें छोड़ दिया, परंतु उससे भी बुरी गंध युक्त हींग खाना प्रारंभ किया। पहाड़ी हिंदुओं ने प्याज लहसुन की जगह पर एक प्रकार की घास खाना आरंभ किया। इन दोनों का निषेध तो शास्त्रों में कहीं नहीं है।
3: अन्य धर्मों में खाने पीने के बारे में कोई मना ही नहीं है, क्या वे सब कुछ खा सकते हैं?
1: सभी धर्मों में खाने पीने के संबंध में एक विधि निषेध है, केवल ईसाई धर्म में कुछ नहीं है। जैन और बौद्ध मछली मांस नहीं खाते। जैन लोग जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजें जैसे आलू आदि भी नहीं खाते। क्योंकि खोदने से कीड़े मरेंगे। रात को भी नहीं खाते क्योंकि अंधकार में शायद कीड़े खा जाएं। यहूदी लोग उस मछली को नहीं खाते जिसमें चोयंटा नहीं होता। जो जानवर दो खुर वाला नहीं है और जो जुगाली नहीं करता उसे भी नहीं खाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज यदि रसोई में चली जाए और यदि उस समय कहीं मछली या मांस पकता हो तो उस खाने को ही फेंक देना होगा। इसीलिए कट्टर यहूदी लोग किसी दूसरी जाति के मनुष्य के हाथ का पकाया नहीं खाते।
3: ये बड़ी ही अजीब परंपरा है। तो क्या यहूदी मांस नहीं खाते?
1: हिंदुओं की तरह यहूदी भी व्यर्थी मांस नहीं खाते हैं। जैसे बंगाल और पंजाब में मांस को बलि का महाप्रसाद कहते हैं, उसी तरह यहूदी लोग नियमानुसार बलिदान न होने से मांस नहीं खाते हैं। हिंदुओं की तरह यहूदियों को भी किसी भी दुकान से मांस खरीदने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम भी यहूदियों के अनेक नियम मानते हैं पर इतना परहेज नहीं करते। बस दूध, मांस और मछली एक साथ नहीं खाते। छुआछूत होने से ही सर्वनाश हो जाता है, इसे वे नहीं मानते। हिंदुओं और यहूदियों में भोजन संबंधी बहुत सादृश्य है।
3: हम मांस तो खा सकते हैं पर मुर्गा के लिए मनाही क्यों है?
1: हिंदू जंगली मुर्गा मुर्गी खाते हैं पर पालतू मुर्गा मुर्गी नहीं खाते। बंगाल से लेकर नेपाल और कश्मीर हिमालय तक एक ही प्रथा है। मनु की बताई हुई खाने की प्रथा आज तक उस अंचल में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, किंतु बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेशीय और नेपालियों की अपेक्षा कुमाऊं से लेकर कश्मीर तक मनु के नियमों का विशेष प्रचार है। जैसे बंगाली मुर्गी या उसका अंडा नहीं खाते किंतु हंस का अंडा खाते हैं, वैसा ही नेपाली भी करते हैं, किंतु कुमाऊं में ये भी जायज नहीं है। कश्मीरी जंगली हंस के अंडे को बड़े मजे से खाते हैं पर घरेलू हंस के अंडे नहीं खाते।
3: ऐसा विधि निषेध क्यों है?
1: इन विधि निषेधों में अधिकांश स्वास्थ्य के लिए ही है, इसमें संदेह नहीं, किंतु सब जगह समान नहीं हो सकता। घरेलू मुर्गी कुछ भी खा लेती है और बहुत गंदी रहती है, इसीलिए उसे खाने का निषेध किया है। पर जंगली जानवर क्या खाते हैं कहो, उसे कौन देखने जाता है? इसके अलावा जंगली जानवरों को रोग कम होता है।
3: अच्छा, मांस मछली ना सही पर दूध तो सभी के लिए सर्वमान्य है।
1: नहीं, दूध के लिए भी कई निषेध हैं। पेट में अम्ल की अधिकता होने पर दूध किसी तरह पचता ही नहीं, यहाँ तक कि कभी कभी एक गिलास दूध पी लेने से फौरन मृत्यु हो जाती है। जैसे बच्चे माता का दूध पीते हैं वैसे ही ठहर ठहर कर दूध पीना चाहिए, इससे वो जल्दी हजम होता है, नहीं तो बहुत देर लगती है। दूध बहुत देर में हजम होने वाली चीज है, मांस के साथ में तो वो और देर में हजम होता है, इसलिए यहूदियों ने इसका निषेध किया है। ना समझ माताएं छोटे बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाती हैं और दो चार महीने के बाद सिर पर हाथ रख कर रोती हैं। आजकल डॉक्टर लोग नौजवान आदमियों के लिए भी एक पाव दूध आधे घंटे में धीरे धीरे पीने का परामर्श देते हैं। छोटे बच्चों के लिए फीडिंग बोतल के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। माँ काम में लगी रहती है इसलिए दाई रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में लेती है और अक्सर उसे अपने दोनों जंघों में दबाती है और चमचे में दूध भरकर जितना उसके मुंह में ठूंस सकती है ठूंस देती है। नतीजा ये होता है कि अक्सर बच्चे को जिगर की बीमारियां हो जाती हैं और उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसी दूध से उनका अंत होता है। जिनमें इस प्रकार के भयंकर खाद्य से बचने की शक्ति होती है वे ही स्वस्थ और बलिष्ठ होते हैं।
2: जब शिशुओं की बात निकली तो स्वामी जी शिशु मृत्यु और पारंपरिक सूतिका ग्रह के बारे में भी बोले।
1: पुराने सूती ग्रह और इस प्रकार दूध पिलाना, इस पर भी जो बच्चे बच जाते हैं वे केवल भाग्यवश ही आजीवन स्वस्थ और बलवान रहते हैं। माता षष्ठी की साक्षात अनुकंपा ना होने पर क्या इन गहरी परीक्षाओं में बच्चों का जीवन बचा रहता? और हमारी उन पुरानी प्रसूति की कोठरियों को, बच्चों को दी जाने वाली सेक को तथा उसी प्रकार के अन्य गवारू उपचारों को तो सोचो। इनमें से जीते जागते बचकर निकल आना प्रसूति और प्रसूत बच्चे दोनों के लिए ही मानो बड़े भाग्य की बात है। प्राचीनों का विश्वास था कि मनौती मानकर तुलसी चौरा की मिट्टी आदि खिलाने से बच्चा और उसकी माँ बच जाती है, और फिर साक्षात यमराजों के दूत चिकित्सकों के हाथ में उन्हें नहीं रहना पड़ता।
0: इस तरह स्वामी जी ने हमें देश विदेश के आहार नियमों के बारे में बताया। देश विदेश की यात्रा तो आज हम अक्सर करते हैं, पर क्या इन बातों पर हमारा ध्यान जाता है? अगली कड़ियों में हम आपको देश और विदेशियों के बारे में और भी जानकारी देंगे, जैसा कि हमें स्वामी जी के संस्मरणों से पता चलता है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: az dran kiyo.
1: अरे भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे आप हंसी तरंग सुनिए।
2: अच्छा तू मला एकच सांगतो, स्वर अनंत केंद्रावर ऐकत जा हास्य तरंग।
3: मी काय म्हणतो, हास्य तरंग स्वर अनंत केंद्रावर हास्य तरंग।

0: विनोबा जी कहते हैं,
1: मेरा एक गुण है, उसे गुण कहें या दोष कहें, दोनों ही माने जा सकते हैं। वो ये कि मैं कभी किसी को आग्रहपूर्ण कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता। परिणाम, काम की पूर्णता में देरी होती है, वो तो होता ही है, पर खराब नहीं होता है। इतना ही नहीं, मैं जो कुछ भी काम बताता हूं उसका दबाव किसी पर आने नहीं देता। मेरे पास श्रेष्ठ विचार है, पर उनका किसी पर दबाव ना बने, ये श्रेष्ठ विचार है। मेरे विचारों से अगर सामने वाला सहमत तो आनंद, और अगर असहमत हो, उस पर अमल नहीं किया तो भी आनंद। मेरे विचारों से असहमत होकर किसी दबाव में आकर कोई मेरे उन विचारों को अगर मानता है तो मुझे बड़ा दुख होगा। परंतु विचारों से सहमत होने पर आज नहीं तो कल उन विचारों पर अमल करेगा, ऐसी आशा रखता हूं। मैं किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करता, यही वजह है कि मैं किसी पर विचार थोपना नहीं चाहता। सत्ता सेवा को समाप्त करने वाली है, अतः मैं सत्ता का दुश्मन हूं। मुझ पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। कई बार गलतफहमियों की वजह से मुझ पर जो आरोप लगते रहे, उनका मेरे मन पर कभी असर नहीं हुआ। वजह, ईश्वर जैसा नचाएगा वैसा मैं करता हूं, ये काम उसका है। वो मुझे घुमा रहा है, इसलिए मैं घूम रहा हूं। इससे ज्यादा प्रचार की चिंता नहीं करता। प्रकाश के प्रचार की भांति विचारों का फैलाव भी आकाश से होता है, जिसे आकाश भी नहीं रोक सकता। यही वजह है कि विचारों पर मेरी श्रद्धा है और निर्भयता से काम कर रहा हूं। मैं पुण्य का नहीं, सेवा का अभिलाषी हूं। मैं केवल सेवा के लिए उत्सुक हूं। वो सेवा का श्रेय भी मेरे हिस्से आए ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये सेवा तो सहज प्राप्त आज की परिस्थिति एवं समय की आवश्यकता अनुसार है। मुझसे जो सेवा हुई वह समय की मांग है, और वो समय ने मुझसे करवा ली। इसका श्रेय नहीं मुझे मिलेगा। एक छोटी लकड़ी अगर गंगोत्री में गंगा नदी में गिरती है और वो 1,500 मील प्रवाह के साथ बहते बहते अंत में सागर में गिरती है, तो तैरने का श्रेय उसे नहीं मिलेगा। वह तो प्रवाह के साथ थी, अगर वह प्रवाह के विपरीत थोड़ा भी तैरती तो शायद तैरने का श्रेय उसे मिल जाता। किंतु 1,500 मील का सफर तय करने के बाद भी तैरने का श्रेय उसे नहीं मिला। उसी प्रकार मैंने जिस सेवा का व्रत लिया है, वह अगर प्रवाह के विरुद्ध होती तो शायद उसका श्रेय मुझे मिलता। परंतु यह सेवा प्रवाह के साथ है, समय की मांग है, अतः वह सेवा भले ही मेरे हाथों से हो रही हो, किंतु वह मेरे नाम से जमा नहीं होगी, ऐसा बंदोबस्त मैंने कर रखा है। मैं जो उद्देश्य लेकर चला, उसे पूर्ण करने की जवाबदारी सिर्फ मेरी है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि ये कार्य ईश्वर का है, वो होगा ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सत्य का विरोध कोई नहीं कर सकता। सत्य ग्रहण करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, परंतु सत्य को कोई टाल नहीं सकता। सत्य का विरोध करने वाली शक्ति संसार में टिक नहीं सकती। अतः मैं निःशंक और निर्भय होकर अपने विचार जनता के सामने रखता हूं। रात को ईश्वर की गोद में सर रखकर निःस्वप्न नींद लेता हूं, और पुनर्जन्म के अनुसार दूसरे दिन मैं पुनः अपने कार्य में मग्न होता हूं। मैं तो सबकी चाहत को चाहता हूं, सब में बसने वाले नारायण के दर्शन का अभिलाषी हूं। नर नारी बच्चे सभी मेरे लिए नारायण का अवतार हैं। जिस आत्मीयता से नारद सभी के पास पहुंचते हैं, उसी आत्मीयता से मैं पहुंचता हूं। मेरे लिए सभी अंतरात्मा और ईश्वर के रूप हैं, जो सब में हैं, हर एक में विराजमान हैं। उन्हीं गुणों के माध्यम से मैं उनके हृदय में प्रवेश करता रहता हूं। अगर मेरी वाणी सत्य होगी तो हर घर तक पहुंचेगी, प्रत्येक हृदय तक पहुंचेगी। मैं तो मजाक में कहता रहता हूं कि आईने में सूरत देखने की मुझे फुर्सत नहीं और उसकी आवश्यकता भी नहीं। ये जो विविधता से सजे चेहरे हैं उन सब में मैं अपने आप को देखता हूं, ऐसी मेरी भावना है। मेरी यात्रा में मैंने पल हर पल यही अनुभव लिया है। जिस प्रांत में मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती थी, उस प्रांत में मेरे भाषण का जैसे तैसे अनुवाद करके वहां के लोगों तक पहुंचाया जाता था। उन सारे प्रदेशों में भी मुझे आत्मदर्शन का अनुभव हुआ और इसकी जांच यानी उन्हें भी वही अनुभव हुआ। मैं जहां जहां भी गया वहां के लोगों ने मुझे दूसरे प्रांत का ना मानकर अपना ही समझकर आदर दिया, प्यार दिया। मेरा तो अनुभव यह था कि जितने प्यार से, आत्मीयता से महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं, उतनी आत्मीयता से अन्य प्रांत के लोग भी।
0: इसका भी अनुभव विनोबा जी को हुआ। दर्शकों की तरफ से जो उनके दर्शन के अभिलाषी होते हैं, उन्हीं की ओर देखने का दृष्टिकोण मनुष्य मूर्ति के रूप में नहीं तो साक्षात प्रभु राम जो उनके हृदय में वास करते हैं, केवल उन्हीं के विविध रूपों में सज धज कर उनके सामने विराजमान है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। बचपन की घटना को याद करते हुए विनोबा जी कहते हैं,
1: मेरी माँ रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे मानो भगवान राम का जन्म ले रहे हों ऐसी कल्पना कर ध्यानावस्थ बैठ जाती थी। उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धाराएं बहती। मैं माँ से कभी कभी मजाक में पूछता था, कैसा हुआ राम का जन्म, राम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता है जवाब में माँ क्या कहती, दिखाई देंगे बेटा, तुझे भी दिखाई देंगे। उनके इन आशीर्वचन के अनुसार मैं आज अपनी खुली आंखों से सामने बैठे राम को देख रहा हूं। मुझे ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि मैं सिर्फ रामनवमी के दिन ही राम के दर्शन नहीं करता तो अन्य समय भी उनके दर्शन हो जाते हैं, एक भी दिन कोरा नहीं जाता। यात्रा में तो रोज ही अपनी आंखों से राम के दर्शन करता रहता हूं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, कहां है प्रभु? जब इसका विचार करता हूं तो उसके अखंड दर्शन मुझे हो रहे हैं ऐसा आभास होता है। निरंतर 13 वर्ष ये दर्शन मुझे प्राप्त होते गए और उसी से मेरा पोषण होता रहा। यह शरीर अन्न से बना है, अन्न के आधार पर ही उसका पोषण होता है, परंतु इस देह के लिए अन्न का पोषण ही पर्याप्त नहीं तो दूसरे भी पोषण की आवश्यकता होती है। वही पोषण 13 साल मुझे मिलता रहा है। यही वजह है कि अनेक विषम परिस्थितियों में भी इस शरीर द्वारा सेवा कार्य में कर सका। वह पोषण था हरि दर्शन का।

0: विनोबा अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि
1: मैं कई कारणों से अपने आप को दुर्बल मानता हूं। केवल एक ही बल मुझे बलवान बनाता है। उस बल का उद्गम कहां है यह किसी को नहीं पता, परंतु उसका प्रभाव सभी को पता है। उसके प्राप्त की परवाह कोई नहीं करता, किंतु उसका अनुभव सभी को होता है। मुझ में से अगर उसे निकाल दिया जाए तो मेरा वजूद कुछ नहीं रहेगा। जिस वजह से मेरी पदयात्रा चलती रहती है, ऐसी मेरी अपनी कोई शक्ति का अनुभव मैंने नहीं किया। वो तो एक साक्षात्कार ही होगा। इसे कुरान में आयतुल यकीन कहते हैं। मैं चारों तरफ से परमात्मा की शक्ति से सराबोर हूं। इस शक्ति के अलावा कोई दूसरी शक्ति का वलय मुझे मेरे चारों ओर नजर नहीं आता। ईश्वरीय वातावरण के अलावा मैं किसी दूसरे वातावरण में नहीं रहता। देश भर पैदल घूमकर लाखों एकड़ जमीन मांगना और लोगों में उसे बांटना, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं। मेरे पास ना तो अधिकार है और ना ही कोई संस्था। ईश्वर ने संकेत किया तो मैं चलने लगा और चल ही रहा हूं। चलते चलते वह जैसा नचाता है मैं नाचता हूं, वरना इतनी शक्ति मुझ में कहां। लोगों को जैसे मेरे दर्शन की इच्छा होती है, वैसी मुझे भी तीव्र उत्कंठा होती है, इच्छा होती है उनके दर्शन की। लोग ईश्वर हैं मेरे लिए, और ईश्वर काशी रामेश्वरम के मंदिर में नहीं, मेरे इन बंधु भगनियों के हृदय में वास करता है। मेरे कृष्ण सिर्फ मथुरा में नहीं रहते। मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां मुझे उनके दर्शन होते हैं, वरना तो व्यर्थ का भ्रमण न करता। इन 12-13 वर्षों में मुझे जो दर्शन के अवसर व लाभ मिले, वो शायद ही कम लोगों को मिले हों। मेरा लोक संपर्क यह हृदय लोक संपर्क होता है, ना कि सूरत का।

0: वाणी संयम की शिक्षा के बारे में विनोबा जी कहते हैं,
1: बोलना मेरी किस्मत में लिखा था। बचपन से आज तक मैं बोल ही रहा हूं। पहले बचपन में विद्यार्थियों के सामने, मित्र परिवार के सामने, उसके बाद आश्रमवासियों के सामने और बाद में जनता के सामने भाषण देना, चर्चा करना निरंतर चलता रहता। बचपन में बोलने पर विशेष अंकुश न रखता था, सहज भाव से मन में जो भाव उठते कह देता। किसी के पास एक और दूसरे के पास दूसरा, ये मुझे पता नहीं था। ये बात मेरे मित्र जानते थे, इसीलिए कभी मैंने तीखे प्रहार भी वाणी के अगर करने पड़े तो किए, मगर किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचने दी या संबंधों में दरार नहीं आने दी। मगर जब बापू के सहवास का लाभ मिला तो ये भी महसूस होने लगा कि वाणी पर अंकुश का होना अति आवश्यक है, खास तौर पर विषम परिस्थितियों में। कभी किसी से ऊंचा बोला तो शिकायत बापू के पास पहुंच जाती थी, मगर बापू ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा ही दूसरों के सामने मेरा बचाव किया। बापू को मेरा बचाव करना पड़ता है, इस बात का जब मुझे पता चला तो मैं अधिक जागरूक होकर वाणी पर संयम रखने लगा।
0: विनोबा जी का मानना है कि उनकी पदयात्रा में भारत के दर्शन उन्हें प्राप्त

0: समग्र ज्ञान होना मुश्किल है, मुझे तो केवल उसका एक अंश ही प्राप्त हुआ है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, परंतु उस दर्शन प्राप्ति का प्रयास मेरे बचपन से निरंतर चल रहा है, और वैसे अवसर भी मुझे प्राप्त होते गए। भारत के लगभग सभी साहित्य का परिचय मैं पा चुका था। यही वजह है कि भारत कैसा है इसका थोड़ा सा आकलन हुआ, किंतु यात्रा के दौरान एक नवीन दर्शन के माध्यम से भारत का हृदय अति विस्तृत स्वरूप में सामने आया।
1: अपने स्वभाव के प्रति विनोबा जी के विचार ये थे कि उनकी माँ उन्हें अंतर्मुखी मानती थी। उनका मानना था कि विनोबा लोगों को टालता है, उनसे दूर भागता है, परंतु विनोबा जी कहते हैं,
0: मजेदार बात यह है कि मैं लोगों के पीछे रहता हूँ और लोग मेरे साथ। जितनी मेरी पहचान लोगों से है शायद उतनी और किसी की भी नहीं होगी, जो एकदम बचपन से है। ये पहचान ऐसी है, इसका क्या कारण है? इतना जनसंग्रह क्यों हो सका? कारण ये है कि स्वयं का रक्षण कैसे करें तथा दूसरों के काम कैसे आए ये मुझे पता था। स्वयं रक्षण हेतु गोपनीय बने रहे और दूसरों की सहायता के लिए खुलकर सामने आए। पानी के उस नल की तरह सरल, जब जरूरत हो खोलें और बंद करें। मेरी इसी शक्ति ने किसी का आक्रमण मुझ पर होने नहीं दिया, और ना ही मित्रों के, बड़ों के, अपरिचितों के आक्रमण होने देता हूँ। अच्छे कार्यों के लिए मेरा अंत हृदय सदैव ही खुला रहता है।
1: वे आगे कहते हैं कि
0: योग वशिष्ठ में आचार्य वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया है कि अंतर से त्याग और बाहर से समाज के साथ रहना चाहिए। हे राघव, आप जनलोक में विचरण करते रहो।
1: श्री माधव देव ने इसका अच्छा विवरण किया है। बहिरथ संग देखा योग, बाह्य आसक्ति का प्रदर्शन करो। काम करते वक्त कार्य के प्रति आसक्ति का प्रदर्शन करो, परंतु अंततः से पूर्णतः अनासक्त रहो। मूल संस्कृत में आंतुन त्याग बाहेरुन न संग, इतना ही। अंततः बोध रखे और बाहर से साथ है ऐसा दिखाए, ये विवरण श्री माधव देव ने किया है। ये अंतर्द्वंद नहीं, दो विरोधी विचार नहीं, तो ये एक ध्रुव तारा है। इस संदर्भ में लोकमान्य तिलक ने जहाज का उदाहरण दिया है। मुंबई से निकला जहाज किसी भी बंदरगाह पर पहुंच सकता है केवल एक ध्रुव तारे के सहायता से। ध्रुव तारा ही वो निशान है, ध्रुव तारे पर राहत निशानी जिसे हम मुक्ति मानते हैं, वो एक ध्रुव तारा। अगर ये सामने न हो तो हमारा ध्येय लक्ष्य गलत हो सकता है, भटकन हो सकती है। अतः मुक्ति हमारा ध्रुव तारा और प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारा प्रवास मार्ग, हमारा ध्यान सदैव प्रवास करते समय ध्रुव तारे पर हो तो हमारा अप्रोच प्रत्यक्ष होगा, अहिंसा का होगा। विनोबा जी कहते हैं,
0: मेरे मित्र सहकारी मेरी कार्य पद्धति को गूढ़ मानते हैं। वे बापू में ज्यादा भोलापन पारदर्शिता को देखते हैं, गूढ़ता को नहीं। किंतु वे ये भी मानते हैं कि मेरी पद्धति भले ही गूढ़ हो फिर भी वह शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक लगती है। इस पर मेरा तर्क ऐसा है कि कुछ अंतर अनुभव का होता है और कुछ समय का। जैसे बापू के और आज के काल में अंतर है, वैसे उनके और मेरे अनुभव में भी अंतर है। आज की मांग है मूल से आरंभ करने की, उच्च वर्ग से जितनी सहायता मिले उसे भी ले, किंतु शुरुआत मूल से ही होनी चाहिए। शंकराचार्य ने जहां से शुरुआत की मैं वहां से नहीं करता। विद्वानों के पास जाना, उनके विचारों में परिवर्तन करना और आगे का वह ही करेंगे, यह था शंकराचार्य जी का अप्रोच। किंतु मेरा अप्रोच तो कबीर का है, सरल सर्वसामान्य जन जन तक पहुंचना।
1: विनोबा जी आत्म अवलोकन करते हुए ये मानते हैं कि उनमें गूढ़वाद है। यही वजह है कि वे भ्रमण तो पृथ्वी पर करते हैं किंतु उनका चित्त किसी दूसरे स्तर पर होता है। वे कहते हैं,
0: अगर बापू के पास गया नहीं होता तो ध्यान धारणा के कार्यक्रम में आगे आने वाले मिस्टिक की दिशा में गया होता। किंतु बचपन से गीता का आकर्षण था और गीता में कर्म और ध्यान योग को एक रूप बताया है, यही कारण था

0: जीवन में समत्व की आवश्यकता महसूस हुई और बापू के पास पहुंचने पर तो मेरे अंतर का विरोध ही समाप्त हो गया। मैं निरंतर उनके ही मार्ग पर चलता रहा और आज भी मेरे कदम उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं। रात दिन उसी का चिंतन है, फिर भी अंतस में एक बात है जो इन सब से अलग है।
1: किंतु बचपन से गीता का आकर्षण था और गीता में कर्म और ध्यान योग की एक रूपता को बताया है। वे आगे कहते हैं,
0: गांधी जी मुख्यतः एक्टिविस्ट थे और उनके बैकग्राउंड में मिस्टिसिज्म था। इसके विपरीत विवेकानंद बाहर से मिस्टिक थे तो बैकग्राउंड में एक्टिविस्ट थे, अर्थात उनमें मुख्यतः ध्यान आदि की वृत्ति दिखाई देती है। रामकृष्ण परमहंस में पूर्णतः मिस्टिसिज्म दिखाई देता है। उनके जीवन से सामान्य व्यक्ति को भले ही बहुत बोध मिलता हो तो भी उनके जीवन का स्वरूप पूर्णतः गूढ़वादी था। और जब मैं आत्मविश्लेषण करता हूं तो स्वयं को इन दोनों के मध्य में पाता हूं।
1: विनोबा जी मानते हैं कि
0: जीवन में करने के लिए जो कुछ भी सूझा उसे करने के लिए शास्त्र ग्रंथों के अलावा शंकर, ज्ञानदेव, महात्मा गांधी, इन तीनों की ओर से सबसे अधिक मदद मिली। गांधी जी के विचारों का और ग्रंथों का अध्ययन तो हुआ, साथ में उनका सहवास लाभ भी प्राप्त हुआ। उन्होंने जो सेवा कार्य खड़े किए थे उनमें से कुछ सेवा कार्यों में मेरा तारुण्य काल का जीवन बीता। महापुरुष संशय जिसे कहते हैं उसका पूर्ण लाभ सही अर्थों में मिला। संगति, विचारों का लाभ और उनके साथ काम करने का अवसर, ये तीनों का संगम ही महापुरुष संशय होता है, वह मुझे मिला।
2: आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा उपकार मुझ पर है, कारण तत्व ज्ञान संबंधी जो तार्किक शंका मन में उठ रही थी उनका निरसन करने में आदि शंकराचार्य की सर्वाधिक मदद मिली। उनके विचार ऋण सर्व मेरी नसों में हैं। ज्ञानदेव का उपकार किन शब्दों में मानूं, वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वह तो चिंतन में है, हृदय में है, मेरी कार्य पद्धति में है, इतना ही नहीं मेरे शरीर पर भी है। इन सब का इतना परिणाम हुआ कि मैं मूलतः बहुत कठोर व्यक्ति हूँ, या यूं कहिए कि एक बेढंगा पाषाण। इस पाषाण को शंकराचार्य ने मजबूत बनाया, गांधी जी ने उस पर कामगिरी कर उसे आकार प्रदान किया, परंतु मेरे जीवन और हृदय में मिठास अगर किसी ने घोली, इस पाषाण से पानी निकालने का पराक्रम अगर किसी ने किया होगा तो सिर्फ ज्ञानदेव ने किया।
1: अंत में विनोबा जी आत्मविश्लेषण करते समय कहते हैं,
0: मैं जब स्वयं के बारे में विचार करता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, तब कुछ स्थूल भाग्य का स्मरण हो आता है और उनकी बहुत बड़ी दीवार सी बन जाती है, राष्ट्र सी बन जाती है। मुझे जो माता पिता मिले वो विशेष थे, ऐसा लोगों का मानना था। मुझे जो भाई मिले उनकी अपनी विशेषता थी, और जो मार्गदर्शक मिले वे तो निसंशय लोक दृष्टि से महात्मा माने गए। जो स्नेही मित्र मिले वे सभी लोगों के प्रेम पात्र बने। जो विद्यार्थी मिले उन पर तो मैं स्वयं ही मुग्ध हूँ। इसके अलावा मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण अनेक संत पुरुषों का, धर्म पुरुषों का विचार रस सेवन करने का अवसर निरंतर मिलता गया और मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुख्य भाग तो वही है जो मेरा है, तुम्हारा है और सभी का है, और वह ये कि हम सब ईश्वर के अंग हैं, अवयव हैं, तरंग हैं। मुख्य भाग ये कि हम ईश्वर में समाविष्ट हैं। अगर यह अनुभूति हुई तो हमारा बेड़ा पार होगा।

0: अंग है, अतः वह सेवा भले ही मेरे हाथों से हो रही हो किंतु वह मेरे नाम से जमा नहीं होगी, ऐसा बंदोबस्त मैंने कर रखा है। मैं जो उद्देश्य लेकर चला उसे पूर्ण करने की जवाबदारी सिर्फ मेरी है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि यह कार्य ईश्वर का है, वो होगा ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सत्य का विरोध कोई नहीं कर सकता, सत्य ग्रहण करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, परंतु सत्य को कोई टाल नहीं सकता। सत्य का विरोध करने वाली शक्ति संसार में टिक नहीं सकती, अतः मैं निशंक और निर्भय होकर अपने विचार जनता के सामने रखता हूं। रात को ईश्वर की गोद में सर रखकर निःस्वप्न नींद लेता हूं और पुनर्जन्म के अनुसार दूसरे दिन मैं पुनः अपने कार्य में मग्न होता हूं। मैं तो सबकी चाहत को चाहता हूं, सब में बसने वाले नारायण के दर्शन का अभिलाषी हूं। नर नारी बच्चे सभी मेरे लिए नारायण का अवतार हैं। जिस आत्मीयता से नारद सभी के पास पहुंचते हैं, उसी आत्मीयता से मैं पहुंचता हूं। मेरे लिए सभी अंतरात्मा और ईश्वर के रूप हैं, जो सब में हैं, हर एक में विराजमान हैं। उन्हीं गुणों के माध्यम से मैं उनके हृदय में प्रवेश करता रहता हूं। अगर मेरी वाणी सत्य होगी तो हर घर तक पहुंचेगी, प्रत्येक हृदय तक पहुंचेगी। मैं तो मजाक में कहता रहता हूं कि आईने में सूरत देखने की मुझे फुर्सत नहीं और उसकी आवश्यकता भी नहीं। ये जो विविधता से सजे चेहरे हैं, उन सब में मैं अपने आप को देखता हूं, ऐसी मेरी भावना है। मेरी यात्रा में मैंने पल हर पल यही अनुभव लिया है। जिस प्रांत में मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती थी, उस प्रांत में मेरे भाषण का जैसे तैसे अनुवाद करके वहां के लोगों तक पहुंचाया जाता था। उन सारे प्रदेशों में भी मुझे आत्मदर्शन का अनुभव हुआ और इसकी जांच यानी उन्हें भी वही अनुभव हुआ। मैं जहां जहां भी गया, वहां के लोगों ने मुझे दूसरे प्रांत का ना मानकर अपना ही समझकर आदर दिया, प्यार दिया। मेरा तो अनुभव यह था कि जितने प्यार से, आत्मीयता से महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं, उतनी आत्मीयता से अन्य प्रांत के लोग भी।
1: इसका भी अनुभव विनोबा जी को हुआ। दर्शकों की तरफ से जो उनके दर्शन के अभिलाषी होते हैं, उन्हीं की ओर देखने का दृष्टिकोण मनुष्य मूर्ति के रूप में नहीं तो साक्षात प्रभु राम जो उनके हृदय में वास करते हैं, केवल उन्हीं के विविध रूपों में सज धज कर उनके सामने विराजमान है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। बचपन की घटना को याद करते हुए विनोबा जी कहते हैं,
0: मेरी माँ रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे मानो भगवान राम का जन्म ले रहे हों ऐसी कल्पना कर ध्यानावस्थ बैठ जाती थी। उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धाराएं बहती। मैं माँ से कभी कभी मजाक में पूछता था, कैसा हुआ राम का जन्म, राम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता है जवाब में माँ क्या कहती, दिखाई देंगे बेटा, तुझे भी दिखाई देंगे। उनके इन आशीर्वचन के अनुसार मैं आज अपनी खुली आंखों से सामने बैठे राम को देख रहा हूं। मुझे ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि मैं सिर्फ रामनवमी के दिन ही राम के दर्शन नहीं करता तो अन्य समय भी उनके दर्शन हो जाते हैं, एक भी दिन कोरा नहीं जाता। यात्रा में तो रोज ही अपनी आंखों से राम के दर्शन करता रहता हूं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, कहां है प्रभु? जब इसका विचार करता हूं तो उसके अखंड दर्शन मुझे हो रहे हैं, ऐसा आभास होता है। निरंतर 13 वर्ष ये दर्शन मुझे प्राप्त होते गए और उसी से मेरा पोषण होता रहा। ये शरीर अन्न से बना है, अन्न के आधार पर ही उसका पोषण होता है, परंतु इस देह के लिए अन्न का पोषण ही पर्याप्त नहीं तो दूसरे भी पोषण की आवश्यकता होती है। वही पोषण 13 साल मुझे मिलता रहा है।

0: विनोबा अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि
1: मैं कई कारणों से अपने आप को दुर्बल मानता हूं। केवल एक ही बल मुझे बलवान बनाता है। उस बल का उद्गम कहां है यह किसी को नहीं पता, परंतु उसका प्रभाव सभी को पता है। उसके प्राप्त की परवाह कोई नहीं करता, किंतु उसका अनुभव सभी को होता है। मुझमें से अगर उसे निकाल दिया जाए तो मेरा वजूद कुछ नहीं रहेगा। जिस वजह से मेरी पदयात्रा चलती रहती है, ऐसी मेरी अपनी कोई शक्ति का अनुभव मैंने नहीं किया। वो तो एक साक्षात्कार ही होगा। इसे कुरान में आयतुल यकीन कहते हैं। मैं चारों तरफ से परमात्मा की शक्ति से सराबोर हूं। इस शक्ति के अलावा कोई दूसरी शक्ति का वलय मुझे मेरे चारों ओर नजर नहीं आता। ईश्वरीय वातावरण के अलावा मैं किसी दूसरे वातावरण में नहीं रहता। देश भर पैदल घूमकर लाखों एकड़ जमीन मांगना और लोगों में उसे बांटना, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं। मेरे पास ना तो अधिकार है और ना ही कोई संस्था। ईश्वर ने संकेत किया तो मैं चलने लगा और चल ही रहा हूं। चलते चलते वह जैसा नचाता है मैं नाचता हूं, वरना इतनी शक्ति मुझ में कहां। लोगों को जैसे मेरे दर्शन की इच्छा होती है, वैसी मुझे भी तीव्र उत्कंठा होती है, इच्छा होती है उनके दर्शन की। लोग ईश्वर है मेरे लिए, और ईश्वर काशी रामेश्वरम के मंदिर में नहीं, मेरे इन बंधु भगनियों के हृदय में वास करता है। मेरे कृष्ण सिर्फ मथुरा में नहीं रहते। मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां मुझे उनके दर्शन होते हैं, वरना तो व्यर्थ का भ्रमण न करता। इन 12-13 वर्षों में मुझे जो दर्शन के अवसर व लाभ मिले, वो शायद ही कम लोगों को मिले हों। मेरा लोक संपर्क यह हृदय लोक संपर्क होता है, ना कि सूरत का।

0: वाणी संयम की शिक्षा के बारे में विनोबा जी कहते हैं,
1: बोलना मेरी किस्मत में लिखा था। बचपन से आज तक मैं बोल ही रहा हूं। पहले बचपन में विद्यार्थियों के सामने, मित्र परिवार के सामने, उसके बाद आश्रमवासियों के सामने और बाद में जनता के सामने भाषण देना, चर्चा करना निरंतर चलता रहता। बचपन में बोलने पर विशेष अंकुश न रखता था, सहज भाव से मन में जो भाव उठते कह देता। किसी के पास एक और दूसरे के पास दूसरा, ये मुझे पता नहीं था। ये बात मेरे मित्र जानते थे, इसीलिए कभी मैंने तीखे प्रहार भी वाणी के अगर करने पड़े तो किए, मगर किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचने दी या संबंधों में दरार नहीं आने दी। मगर जब बापू के सहवास का लाभ मिला तो ये भी महसूस होने लगा कि वाणी पर अंकुश का होना अति आवश्यक है, खास तौर पर विषम परिस्थितियों में। कभी किसी से ऊंचा बोला तो शिकायत बापू के पास पहुंच जाती थी, मगर बापू ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा ही दूसरों के सामने मेरा बचाव किया। बापू को मेरा बचाव करना पड़ता है, इस बात का जब मुझे पता चला तो मैं अधिक जागरूक होकर वाणी पर संयम रखने लगा।
0: विनोबा जी का मानना है कि उनकी पदयात्रा में भारत के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। अगर उसका वर्णन पंडित नेहरू के शब्दों में करना पड़े तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया होगा। विनोबा जी कहते हैं,
1: वैसे देखा जाए तो भारत मेरे लिए अपरिचित नहीं था। भारत के भूतकाल अर्थात उसके इतिहास से मेरा अच्छा परिचय है। वास्तविक भारत के भूतकाल में इतना कुछ समग्र रूप में समाहित है कि उसका समग्र ज्ञान होना मुश्किल है। मुझे तो केवल उसका एक अंश ही प्राप्त हुआ है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। परंतु उस दर्शन प्राप्ति का प्रयास मेरे बचपन से निरंतर चल रहा है, और वैसे अवसर भी मुझे प्राप्त होते गए। भारत के लगभग सभी साहित्य का परिचय मैं पा चुका था। यही वजह है कि भारत कैसा है इसका थोड़ा सा आकलन हुआ, किंतु यात्रा के दौरान एक नवीन दर्शन के माध्यम से भारत का हृदय अति विस्तृत स्वरूप में सामने आया।
0: अपने स्वभाव के प्रति विनोबा जी के विचार ये थे कि उनकी माँ उन्हें अंतर्मुखी मानती थी। उनका मानना था कि विनोबा लोगों को टालता है, उनसे दूर भागता है, परंतु विनोबा जी कहते हैं,
1: मजेदार बात यह है कि मैं लोगों के पीछे रहता हूं और लोग मेरे साथ। जितनी मेरी पहचान लोगों से है शायद उतनी और किसी की भी नहीं होगी। जो एकदम बचपन से है ये पहचान ऐसी है, इसका क्या कारण है? इतना जनसंग्रह क्यों हो सका? कारण ये है कि स्वयं का रक्षण कैसे करें तथा दूसरों के काम कैसे आए ये मुझे पता था। स्वयं रक्षण हेतु गोपनीय बने रहे और दूसरों की सहायता के लिए खुलकर सामने आए। पानी के उस नल की तरह सरल, जब जरूरत हो खोलें और बंद करें। मेरी इसी शक्ति ने किसी का आक्रमण मुझ पर होने नहीं दिया, और ना ही मित्रों के, बड़ों के, अपरिचितों के आक्रमण होने देता हूं। अच्छे कार्यों के लिए मेरा अंतः हृदय सदैव ही खुला रहता है।
0: वे आगे कहते हैं कि
1: योग वशिष्ठ में आचार्य वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया है कि अंतर से त्याग और बाहर से समाज के साथ रहना चाहिए। हे राघव, आप जनलोक में विचरण करते रहो।
0: श्री माधव देव ने इसका अच्छा विवरण किया है, बहिरथ संग देखा योग, बाह्य आसक्ति का प्रदर्शन करो। काम करते वक्त कार्य के प्रति आसक्ति का प्रदर्शन करो, परंतु अंततः से पूर्णतः अनासक्त रहो। मूल संस्कृत में आंतुन त्याग बाहेरुन न संग, इतना ही। अंततः बोध रखे और बाहर से साथ है ऐसा दिखाए, ये विवरण श्री माधव देव ने किया है। ये अंतर्द्वंद नहीं, दो विरोधी विचार नहीं, तो ये एक ध्रुव तारा है। इस संदर्भ में लोकमान्य तिलक ने जहाज का उदाहरण दिया है। मुंबई से निकला जहाज किसी भी बंदरगाह पर पहुंच सकता है केवल एक ध्रुव तारे के सहायता से। ध्रुव तारा ही वो निशान है, ध्रुव तारे पर राहत निशानी जिसे हम मुक्ति मानते हैं, वो एक ध्रुव तारा। अगर ये सामने न हो तो हमारा ध्येय लक्ष्य गलत हो सकता है, भटकन हो सकती है। अतः मुक्ति हमारा ध्रुव तारा और प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारा प्रवास मार्ग, हमारा ध्यान सदैव प्रवास करते समय ध्रुव तारे पर हो तो हमारा अप्रोच प्रत्यक्ष होगा, अहिंसा का होगा। विनोबा जी कहते हैं,
1: मेरे मित्र सहकारी मेरी कार्य पद्धति को गूढ़ मानते हैं। वे बापू में ज्यादा भोलापन पारदर्शिता को देखते हैं, गूढ़ता को नहीं। किंतु वे ये भी मानते हैं कि मेरी पद्धति भले ही गूढ़ हो फिर भी वह शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक लगती है। इस पर मेरा तर्क ऐसा है कि कुछ अंतर अनुभव का होता है और कुछ समय का। जैसे बापू के और आज के काल में अंतर है, वैसे उनके और मेरे अनुभव में भी अंतर है। आज की मांग है मूल से आरंभ करने की, उच्च वर्ग से जितनी सहायता मिले उसे भी ले, किंतु शुरुआत मूल से ही होनी चाहिए। शंकराचार्य ने जहां से शुरुआत की मैं वहां से नहीं करता। विद्वानों के पास जाना, उनके विचारों में परिवर्तन करना और आगे का वह ही करेंगे, यह था शंकराचार्य जी का अप्रोच। किंतु मेरा अप्रोच तो कबीर का है, सरल सर्वसामान्य जन जन तक पहुंचना।
0: विनोबा जी

0: की दिशा में गया होता, किंतु बचपन से गीता का आकर्षण था और गीता में कर्म और ध्यान योग को एक रूप बताया है। यही कारण था जीवन में समत्व की आवश्यकता महसूस हुई और बापू के पास पहुंचने पर तो मेरे अंतर का विरोध ही समाप्त हो गया। मैं निरंतर उनके ही मार्ग पर चलता रहा और आज भी मेरे कदम उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं। रात दिन उसी का चिंतन है, फिर भी अंतस में एक बात है जो इन सब से अलग है।
1: किंतु बचपन से गीता का आकर्षण था और गीता में कर्म और ध्यान योग की एक रूपता को बताया है। वे आगे कहते हैं,
0: गांधी जी मुख्यतः एक्टिविस्ट थे और उनके बैकग्राउंड में मिस्टिसिज्म था। इसके विपरीत विवेकानंद बाहर से मिस्टिक थे तो बैकग्राउंड में एक्टिविस्ट थे, अर्थात उनमें मुख्यतः ध्यान आदि की वृत्ति दिखाई देती है। रामकृष्ण परमहंस में पूर्णतः मिस्टिसिज्म दिखाई देता है। उनके जीवन से सामान्य व्यक्ति को भले ही बहुत बोध मिलता हो तो भी उनके जीवन का स्वरूप पूर्णतः गूढ़वादी था, और जब मैं आत्मविश्लेषण करता हूं तो स्वयं को इन दोनों के मध्य में पाता हूं।
1: विनोबा जी मानते हैं कि
0: जीवन में करने के लिए जो कुछ भी सूझा उसे करने के लिए शास्त्र ग्रंथों के अलावा शंकर, ज्ञानदेव, महात्मा गांधी, इन तीनों की ओर से सबसे अधिक मदद मिली। गांधी जी के विचारों का और ग्रंथों का अध्ययन तो हुआ, साथ में उनका सहवास लाभ भी प्राप्त हुआ। उन्होंने जो सेवा कार्य खड़े किए थे उनमें से कुछ सेवा कार्यों में मेरा तारुण्य काल का जीवन बीता। महापुरुष संशय जिसे कहते हैं उसका पूर्ण लाभ सही अर्थों में मिला। संगति, विचारों का लाभ और उनके साथ काम करने का अवसर, ये तीनों का संगम ही महापुरुष संशय होता है। वह मुझे मिला।
2: आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा उपकार मुझ पर है, कारण तत्व ज्ञान संबंधी जो तार्किक शंका मन में उठ रही थी उनका निरसन करने में आदि शंकराचार्य की सर्वाधिक मदद मिली। उनके विचार ऋण सर्व मेरी नसों में हैं। ज्ञानदेव का उपकार किन शब्दों में मानूं, वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वह तो चिंतन में है, हृदय में है, मेरी कार्य पद्धति में है, इतना ही नहीं मेरे शरीर पर भी है। इन सब का इतना परिणाम हुआ कि मैं मूलतः बहुत कठोर व्यक्ति हूँ, या यूं कहिए कि एक बेढंगा पाषाण। इस पाषाण को शंकराचार्य ने मजबूत बनाया, गांधी जी ने उस पर कामगिरी कर उसे आकार प्रदान किया, परंतु मेरे जीवन और हृदय में मिठास अगर किसी ने घोली, इस पाषाण से पानी निकालने का पराक्रम अगर किसी ने किया होगा तो सिर्फ ज्ञानदेव ने किया।
1: अंत में विनोबा जी आत्मविश्लेषण करते समय कहते हैं,
0: मैं जब स्वयं के बारे में विचार करता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, तब कुछ स्थूल भाग्य का स्मरण हो आता है और उनकी बहुत बड़ी दीवार सी बन जाती है, राष्ट्र सी बन जाती है। मुझे जो माता पिता मिले वो विशेष थे, ऐसा लोगों का मानना था। मुझे जो भाई मिले उनकी अपनी विशेषता थी, और जो मार्गदर्शक मिले वे तो निसंशय लोक दृष्टि से महात्मा माने गए। जो स्नेही मित्र मिले वे सभी लोगों के प्रेम पात्र बने। जो विद्यार्थी मिले उन पर तो मैं स्वयं ही मुग्ध हूँ। इसके अलावा मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण अनेक संत पुरुषों का, धर्म पुरुषों का विचार रस सेवन करने का अवसर निरंतर मिलता गया और मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुख्य भाग तो वही है जो मेरा है, तुम्हारा है और सभी का है, और वह ये कि हम सब ईश्वर के अंग हैं, अवयव हैं, तरंग हैं। मुख्य भाग ये कि हम ईश्वर में समाविष्ट हैं। अगर यह अनुभूति हुई तो हमारा बेड़ा पार होगा।